नाम ले जा रो तने ने तिखा ने से प्याये चौसिया मी तया यो सूरा तुबरी शिवा ठेया।